कल मर गई मम्मी, अत्र बहन तेरी नहीं मुरा रसिल वाह हमन सने तब उन्हें कोई आराम पर उनका सामु कहने से अकुम होना हों उन्हें तब समय तो हाथों ना को ngam katabang ko ni mo kuya Ramon.